0: आत्मा देवरिया गोद में तेरी बरिया अवर काज करे कितने न काम मिल सास संगत भज के बल नाम सरन राम लाभ भोजन करन के जन्म वृथा जात्र माया के खराहो
1: जब तब

तौं सिमट पयो शंकरे खेटा सगली शिष्ट काय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चिंत उठो पाता सकल कलेश करुणन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख थे मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके तुम

सृष्टा तेरा ए नहीं। प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोची विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोची होनी चाहिदी है इंसान नूं वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दां दे राही अपने इन्हां पवित्र वचनां दे राही सानू ओ मत बख्शदे हन जिस मत नूं गुरु मत आख्या जांदा है, गुरु की मत जो कि जीव के जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव के जीवन के जिंदगी दे विच गुरु की मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी, मत जो साधारण तौर पर सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इसकी मंजिल तक पहुंचा सके, अते मनुखा जन्म असी सफला कर सके। गुरु बाबा जी की बाणी असी सारे पढ़ते हैं, अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है। एवें नहीं असी आए, ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनों असी पूरा करना है। ये शिक्षा, ये तालीम असी बड़े कैजुअल माइंड के नाल सुनते हाँ, पर इसनों असी बहुता ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर महाराज जी की बाणी इसनों बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करने दे वास्ते आए हो, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखदे हन अपनी पवित्र बाणी दे विच

गुरु महाराज दसते हैं कि इंसान सानू समझांदे हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द दे राहीं साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राच ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल दा ख्याल ही नहीं, मंजिल दा चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल ते पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई जा, मंजिल ते पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा। तेरी मंजिल किते होर है, लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया। असि इन्हां कीर्तना नू जे ते इस तरह सुनांगे कि असि अपने जीवना नू कोई इंस्पीरेशन दे के अगान तोरना है, तो जो साडा फर्ज बनता है वह असी करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागा की गल है। नहीं तो साड़ी आदत नू महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी सुनानी चाहना थोड़ी जी। साड़ी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज की सी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाने का, कई तरह कहने का। गुरु महाराज मनुख के जीवन नू जानते हैं, ये सुन सुना लेंदा है, पर उसे तरह का ही बनिया रहिंदा है, बदलता नहीं। सबे गल्लां जातियां सारिया गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप किया रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, फिर चुप किया रहिंदा है। जीवन दे विच इह एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इनफॉरमेशन मिलनी चाहिए है, इनफॉरमेशन मिलने तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं, वही कहते हैं कि जिथे तुसी रुक गए हो, जिथे तुसी अपना डेरा बना लिया है, जिसनू तुसी अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओ तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चे नू प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन हुंदी है और उस ख्याल की लड़ी के विच विघन पैंदा है।

भाव अपनी सुरत में वापस कर जोड़िए। गुरु महाराज जी आखते हैं, सुखी ओही हैं जेड़े अपने इस जीवन दे विच निज कर लभ लैणगे। महाराज जी आखते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। ओ सुखी हन, असी सुख लभते हैं ना सर, असी सब सुख लभते, पर कहते ओही सुखी होणगे जेड़े अपना निज कर लभ लैणगे। जेड़े घर तो ही बाहर हैं और सुखी किवें हो सकते, वे घरे किवें सुखी हो सकते। जिनी घर जाता अपना से सुखी है भाई, सो बाणी दे विच थां थां थां थां ते अनेक पंक्तियां ऐसियां आंदियां हैं जिन्हां दे विच महाराज जी निज घर का जो कॉन्सैप्ट है, निज घर का जो विचार है वो सानू सुनाउंदे हन। थोड़ियां पंक्तियां मैं आप जी दे सामने होर अर्ज करां कि निज घर तो उन्हां दा मतलब की है, व्हाट डू दे रियली मीन बाय निज घर। आओ एक पंक्ति दे राही समझन की कोशिश करिए। कहंदे हन

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफामा बना के रिहा कर दे सन। गुरु महाराज जी आख दिन साडी भी एक गुफा है, असी एक गुफा दे विच रहने हैं, पर वो केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरू सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनू सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे वह सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां। वह साडा घर है।

अर्थ अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उते अर्थ अनंत, सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हैं सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। किते महाराज उसनु सहज गुफा आखदे हन कि सहज गुफा घर आसन बांधिया, किते आखदे हन हरख अनंत सोग नहीं बीया, सो घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जदों एक ते हुंदा ना भी बनिया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन के मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा करता हां, कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है, किथे जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उथे मृत्यु आंदी है, ना उथे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उथे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उथो फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो, उस तो उरे उरे जितने भी घर हैं गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इसनु मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। ये है गुरमत दी तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नु गाओ।

Addigra dasam. अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी और जिस वेले राणे नु राजे ने नहीं तकिया तब भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी हैरानी अद्धी रात दा समय राणी किधर चली राजा उठिया महल दे अंदर राणी नु लभण लग गया सारे कमरे वेखे पर राणी दिस नावी मन विच वरत गई है तो प्यारी साध संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउण लगे मंदे भी आउण लगे राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ए तां मैनूं धोखा दिंदी इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई दिन चढ़ेगा जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई राजे ने आवाज दित्ती राणीए उठ राणी उठी राजन हुक्म करो राजे ने पहला सवाल किया राणी ते के राणी सच दस तू राती किथे गई से अधी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी राणी सोचन लगी जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे तो राणी रोज किथे जांदी सी आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे कराती जाए सुने गुरु रोज सत्संग जांदी महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीह होवे चाहे हनेरी कैसा भी वैदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तू बगैर नहीं रह सकता ए प्यार दी निशानी है ए प्यार है राणी सोच राजे ने फिर किया राणी बोल तू राते किथे गई से जे झूठ बोलदी आ तां पति परमेश्वर स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है जे सच बोलदी आ तां सत्संग तू विछड़दी पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग जिस तरह मच्छी पानी तू बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तू बगैर नहीं रह सकता

आनंद साहब पास करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद साहब का पाठ सारे मिलके करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्हां नूं आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने विच सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करदे हैं कीर्तन भेट गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सवेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। यह पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इस राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत वर्जित हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। सरवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

प्यार में शरण करो। ये जो आप जी मैं शरण करवा रहा हूं आज, उस दिन असी गुरमुख प्यारे सरदार जगजीवन सिंह जी सानू नाल लैके गए और सब लोगों नू वेख के जेड़े धर्म का इजहार कर रहे सन अपने अपने तरीके नाल, और मैं भी उन्हां च क्या पाई, दुनिया विच काफी लोग हैं जेड़े बिल्कुल किसी गल नू मानदे ने और जेड़े तुसी मनन वाले हो उही साडा परिवार है, भावें तुसी केड़े धर्म तो बिलोंग करदे। उस तरह ही तुसी गुरु के प्यार वाले सिख जेड़े आ गुरु नू अपनी हाजरी लवांदे हो, और मेरे कीर्तनीय वीर मेरे सामने बैठे हुए हैं, गुरु कृपा करे इन्हां नू चढ़दियां कला बख्शे। इस तरह ही गुरु घर दा संदेश दूर दूर तक पहुंचांदे रहन। श्रवण करो ए पानमती, ए मत ताल है, ए पानमती ताल है, और गुजरी कबीर साहब की गुजरी राग भी गुजरी है, और आप गुजरी सुनो गुजरी विच ही श्रवण करो इसनों, और इस जो इसका ताल है वह 11 मात्र है पानमती ताल।

कबीर साहब कहंदे ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इक्को रब दा नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते। किड्डी वड्डी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम रब दा

छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहिंदे भाई। बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आती है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नस्सा फिरदा दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

ते सिमट पावन तन मन सुखी देख स्वरूप पूरन भैया का दर्शन भेद दूसरी ये नाम पर मंत्री है भुगतान सारी अपना दो गई आगे मिल जाती है चकोर की तरह चंद्रमा में छोड़े चंद्रमा ये अब समझता है कि तो चंद्रमा में रोशनी नहीं मार चाहो आपने कितनी का काका पैदा बकरी आज गिर गया पुनर भी एक बकरी का है माने किया है और दिन से एक बार ही है ना बकरी काट दी आप गरीब आदमी है किसको करा रहे बकरी आज तय कहते हमारा तुमको बकरी का ख्याल नहीं कर रही है मैं और बादशाह बन गया तो सॉरी बोल कोई अमीर छोड़ लेगा अला मिलेगा मेरी मां मैं सच के कोई मान की पता थी कि मेरे पुत्र को और दाता मिला है वो बादशाह मिला है जिसको बादशाह ही होता है नहीं नहीं बेटे अमृत ने सारी दिशा में शहर का दरवाजा देख कुटुंब तो पैदा उठे जाके खड़ा हो जाए जिस वे के जो की पैदा बकरी है मैं कोई बात जान के अपनी बकरी से जान के मैं मान कर आपकी फिक्र की गुजरी भी सही सुता रहा मान ने उठ ले जगाया उसके शहर का देश धर्म की बात होते बीच जाकर पूरा खुले है ते कोशिश कर थोड़ी देरी के बाद शहर का गेट खुल गया इस शहर के वजीर अमीर अहकार सारे प्रश्न जोता रह के प्रश्न ये सके थोड़ा जहा सुसंभर गया थोड़ा जहा डरिया पर सारे पता की माला पाते कह लगे कि अब तो तुम्हें साढ़े बादशाह क्या दिल्ली मैं बादशाह नहीं मैं तो कहता हूं कि मैं चार बार आज आती हाँ नाम का पुत्र कहना देखिए सामने मेरे पता कि तुम्हें कौन हो नीच हो ऊंच हो कमाल हो पर जो उसकी फैसला चीजें है उस संसार आज को तुम शिक्षा दे बात फैसला तेरा फैसला वजीर ने किया इस राज का जरा राजा की उम्र गया और एक संतान कोई उस रेले में रसूल सी बादशाह की गति से वजीर की सी है बादशाह की गति से बादशाह का पुत्र जिंदा सी सारे का पुत्र कोई नहीं आखिरकार यही फैसला किया कि आज अमृत वेले उस वह को भी अमृत वेला खास समा हो सकता मेरे आके अमृत वेले दूसरे हम दोनों कुमारी पर आज अमृत वेले दुकान का बड़ा सोना बगीचा के लिए होश बड़े गुरु कुमारी भाई आए हमारी शासन जेरे आपकी जात की दुर्गम ये उन्हें अब मन जानता है कि जितनी भक्त प्रणाली में होती है फरीद जी ने तो इसे सुनता है कि हरिदा रात सतपुरी वंदी है पूरी चंद्र भक्त अब तो तेरे भक्त पाल की वंदी जाती है जो भी रब रहता है तो सिखाओ जिथे गुरु ने कोरोनार पाद सारे चीजें दिखाई उसे सतगुरु के पास क्या सिखो बड़ी रात अमृत वेले अमृत वेला सपना हरियाली तरी जी कहते रात पूरी होती है दुनिया मेरे न पालो और जिना मैं निंद्रा मेरे जिना मिल रहे तो बड़ा उसे पक्ष है अमृत वेले जाने वाले के गुरु दासनाल भी कह रहे आए हैं माता और पहला बच्चे नहीं कह रही थी गुरु ने कहा कर रहे हैं शासन से जागृत रहे कि नहीं जागृत वाले के कुछ कहना सुखा के और की मिलना है कहना ने क्या फैसला किया अमृत वेले शहर का गेट खोलो जेरा पहला बच्चे लगे उन्हों इस राज के बीच में बिठा रहे हैं तेरे सुने हैं तेरी रचना ने जैसे यार साधन हो गया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬੀਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤ ਲਗਾਏ ਰੂਹ ਕੇਵੜੇ ਲਗਾਏ ਕਿੱਡੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਰੂ ਨੇ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤਿਆ ਆਓ ਬੈਠੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਟੱਕਿਆ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड है न मृत है न पंड है। अकाल है अपाल

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली बात, कहूं अश्व होए के बह

गुरु प्यारे सात सिंह जीओ द गुरबानी यू आर लिसनिंग इज बाय भट्ट कीरत भट्ट सोइये महल्ले चौथे के फॉर द प्रेज ऑफ गुरु रामदास ओ गुरु रामदास ओ ग्रेट लॉर्ड कीप मी एवर इन योर रिफ्यूज गुरु रामदास राखो शरणाए एंड दिस शब्द इज कंपोज्ड इन राग दुर्गा कल्याण एंड द बीट्स आर 10 बीट्स झपता सो यू ट्राई टू टेक नेम ऑफ गुरु रामदास टुगेदर लेट्स कम टुगेदर

मेरे बहुत ही परम प्यारे आदर योग सरदार हरजाप सिंह जी औजला जी ने सवेर से आके कहा कि तुहाडे पिता जी की एक बंदिश है ते ओ जे सुना दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अज शाम नू इंडिया जाना है ते मैं ए बिलावल दी धुन शब्द दी तुका अपने जहन विच बसा के जावांगा तो मेरे वास्ते गुरु अंग संघ वरतदा रहेगा। मैं कह जी बिलावल दिया ते कई बंदिशां सन पिता जी चाचा जी दियां, पर तुसी दस सकदे आ और यकीन करो सात संघ जी इन्हां ने उसे तरह जिवें असीं गाण लगे हां इस तरह सुना दित्ती है। गल बड़ी मौके दी है। तन तन हमारे भाग घर आया फिर मेरा सासी के सारे जन रसना पवित्र कर दे तो कहो जी। तन तन हमारे भाग घर आया फिर मेरा सोहे बंक दुहार सगला मन हरा। इस नू बिलावल राग अंदर ही जिवें मेरे पिता दी बंदिश है वह सरवण करो जी। तन